एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 34 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सुबह की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद आप विविध भारती से हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके तुरंत बाद होगा वंदनवार कार्यक्रम। बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में

0: गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16वीं जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। ये था आज का चिंतन और अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते चलें। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ सुनिएगा। आज सुनिए भाग 238। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। 7:00 गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार सुनिएगा और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी सुनिएगा। लेखक हैं मिलिंद सबनीस और प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 8:00 राजकुमार पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और आज रात 9:30 पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। इसके पहले 12:00 सुनिए हिंदी में समाचार। दिन में 1:00 सुनिए सुरीला सफर। 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष 35वीं कड़ी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:00 समाचार का वक्त है 2:15 से और 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3:00 हेलो सहेली कार्यक्रम होगा और 4:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी सुनिए सुनहरी पूछ वाला अमर पंछी। लेखक है मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का है। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा और 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिएगा।

7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर अनमोल यादें गुलदस्ता सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत। माफ कीजिएगा 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें फिल्म पत्रकार राजीव से जयंत पात्रिकर की बातचीत। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए 15 मिनट पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या और 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था झरोखा आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का।

सिंहासन पर श्रीराम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं, जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है, किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम, दम, संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण, व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले बात आज के प्रसारणों की। आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुप्रभात। इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:40। सुबह 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होंगे। 10:00 सुनिएगा आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

आज सुबह दिन में 11 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का 1315वां भाग। 11:30 बजे विविध भारती से प्रसारित होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। 3:00 सुनिएगा विविध भारती से सखी सहेली और 4:00 गीतों भरी कहानी। आज 5:00 आपका अपना मनपसंद फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम लेकर हम आएंगे, जिसका नाम है हेलो हिसार। 6:00 हिंदी समाचार होंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा। 6:10 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार।

6:30 बजे सुनेगा कार्यक्रम युवा उमंग। 6:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। आज शाम 7 बजे खेती किसाना सिद्धि कार्यक्रम प्रसारित होगा। 7:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम हमारे गांव। पंजाबी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे आज रात 8 बजे। खुला आकाश इसके अंतर्गत सुनेगा एक फिल्म से समय रहेगा 8:30 बजे। 8:45 पर हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9 बजे एक बार फिर आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती के प्रसारणों का। 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेश आपके गीत हमारे। और सभा के अंत में यानी रात 11 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार।

कल सुबह की सभा का आगाज होगा 5:53 पर। 6 बजे सुनेगा विविध भारती से वंदन वार। 6:45 पर कार्यक्रम रूपरेखा प्रसारित होगी। संस्कृत समाचार 6:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7 बजे सुनेगा हिंदी समाचार। लोक रंग कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05। सुप्रभात, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए 7:40 पर। समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 से आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती के प्रसारणों का।

कल सुबह 10 बजे भी रोज की तरह सुनेगा आपका अपना कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम होगा। 12 बजे पल पल दिल के पास हिंदी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर। 1:10 पर विविध भारती से सुनेगा कुछ बातें कुछ गीत। 2 बजे विविध भारती से ही राष्ट्रीय हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। 2:30 बजे विविध भारती से सुनेगा गीत गुंजन और 3 बजे सखी सहेली।

कल शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आएंगे संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम, 6 बजे हिंदी समाचार कार्यक्रम रूपरेखा, 6:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे, 6:10 पर भक्ति संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा 6:20 पर। कल शाम 6:30 बजे युवा उमंग कार्यक्रम प्रसारित होगा। 7 बजे किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे। 7:30 बजे म्हारे गांव कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 8 बजे परिक्रमा शहर की गतिविधियों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:30 बजे सुनिएगा खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म से, और राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे 8:45 पर।

रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। कल रात 10 बजे आप सुनेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनर्प्रसारण। और सभा के अंत में यानी रात 11 बजे सुनेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार।

0: अलग दुनिया होती है।
1: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम।
0: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
2: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
3: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार।

0: 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सबको ले आया है आपके लिए आपके घर में। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 MHz पर। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे हिंदी में समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ. भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ. उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं. एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ. आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते. उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति. अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति. लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति. अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते. पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति. कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः

0: एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्तमन्त्रालयस्य व्ययविभागद्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीणस्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिङ्निर्देशेष् केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के

0: तलाधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के पहले सप्ताह को हम वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया करें। बरसात की ऋतु में वनों का विस्तार करने के उद्देश्य से होने वाले कार्यक्रम जिसमें पेड़ लगाए जाएं, उसने वन महोत्सव कया करें। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर साल वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाए। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वन महोत्सव शुरू कराया गया। 1960 के दशक में पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से इस महोत्सव की शुरुआत भारत में करी गई। वन महोत्सव हर साल मनाया जाए, आम जनता में वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सतत प्रयास वन महोत्सव सप्ताह। आपने विशेष कार्यक्रम सुनवाओगे, कटते जंगल घटता मंगल, तपती धूप जलते पांव, लगाए पेड़ मिलेगी छांव,

पेड़ों की कटाई को रोक के उनका संरक्षण कर हम प्रण लें कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर खेत खलियान में एक पेड़ जरूर लगावे। जहां हरियाली है वहां खुशहाली है, धरती पे स्वर्ग है वहां अरे बरे वृक्ष हैं जहां। तपती धूप जलते पांव लगाए पेड़ मिलेगी छांव, बंजर धरती करे पुकार पेड़ लगा के करे श्रृंगार। आओ करा

पेड़ों का संरक्षण, ये है हमारे भविष्य का संरक्षण। पेड़ों से वायु, वायु से आयु। जिंदगी में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। सूरज, जल, पेड़ पौधे, हवा, भोजन हमारी पहली आवश्यकता है, जो कुदरत के कई रूपों से हमने मिले है। हमें इसके उपयोग का सारा अधिकार न होके अपने हिस्से के उपयोग का है। संतुलित विकास के लिए इसका उपयोग किया जा तो हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे।

आज प्रकृति के साथ जो हमने जाने अनजाने में गलती करी उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज जल और वायु के संतुलन में कमी आई है। विकास की अंधी दौड़ में या भूल मारत होगी, हमने अपने पैरों के कुआड़ी मार ली। आज के जमाने में प्रकृति की सुंदरता को समाप्त करके विकास की रास्ते खोजने हम शुरू कर रहे हैं। पुराने टाइम में हम सब प्रकृति पर आश्रित थे। सामाजिक धार्मिक कार्यों की वजह से हम प्रकृति की पूजा कराया करें। पेड़ों को देवता स्वरूप माना जा। कुदरत आदमी के लिए वरदान है। प्रकृति ने सारे संसाधन हमें निःशुल्क प्रदान करे। हम अपने लालच और लोभ के लिए कुदरत के दिए संसाधनों को इस कदर इस्तेमाल करने लग गए जिस तरह प्रकृति का संतुलन डगमगाता जा रहा है। कुदरत ही वो चीज है जो जल वायु पेड़ पौधे पर्वत वन्य सब मिलके वातावरण को सुंदर बनावे। रंग बिरंगे फूलों ते लदी वादियां, कलकल करती नदियां और झरनों का नजारा सबने सुथरा लग गए। अपने तन मन और मस्तिष्क के तनाव को दूर करने के लिए ये प्रकृति हमें अपनी गोदी में रखे।

से बेईमाना के मारे से दाना के चार तू कर दे या पाकी खड़ी दवा।

कुदरत का नजारा बहुत लंबा चौड़ा है। पंच तत्व जल वायु अग्नि आकाश जल मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं। आदमी तो एक छोटा सा अंश है। आदमी जब इन पंच तत्वों के साथ अच्छा समायोजन करेगा, जब भी उसका जीवन सुखी होगा।

आज के टाइम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषण का भयानक रूप आज हम देखने लाग रहे। कटते जंगल और घटते मंगल को एक ज्वलंत समस्या मान के हर आदमी ने पेड़ पौधे लाने चाहिए। आज के टाइम सरकार, सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रदूषण निवारक संस्थाएं पेड़ों की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का अभियान चला रही है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जैसे ऐसे आंदोलन हुए जिससे हमारे पेड़ों का संरक्षण हुआ। राजस्थान में बिश्नोई समाज ने पेड़ों की कटाई के विरोध में बलिदान दिए

आज के टाइम में जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। लोगों को मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी, फर्नीचर, उद्योग धंधों के लिए हम पेड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पर्यावरण को शुद्ध रखने वाले प्राकृतिक साधनों में हरियाली, वृक्षावली, पेड़ों का बहुत महत्व है। अशुद्ध वायु को शुद्ध करके स्वास्थ्य के अनुकूल बनावे हैं हमारे पेड़। पेड़ों के आकर्षण से बादल जल बरसावे जिससे धरती उपजाऊ बन जा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्या खड़ी है। आइए प्रण लें, हर व्यक्ति पेड़ लगावे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो पेड़ पौधे लगाए थे, जिनके फल और छाया आज हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर आज हम पेड़ पौधे लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियां फल और छाया प्राप्त कर सकेंगी और अपने स्वर्णिम इतिहास को जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। किसी भी आयोजन, जन्मदिन, कोई भी बार त्योहार का मौका हो, पेड़ लगावे, जीवन बचावे, जिससे हमारी धरती हरी भरी हो, हमारा प्राकृतिक वातावरण साफ सुथरा हो, हमें सुख की सांस मिले, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली हो।

0: किंतु पुराना बेहतरीन।
1: दिल चीज क्या है?
2: नया श्रेष्ठ है।
3: केसरिया तेरा,
0: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
2: नया उत्कृष्ट है।
3: तेरी गलियां,
0: किंतु पुराना अनमोल।
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल था।
2: नया अनूठा है,
0: किंतु पुराना अनुपम।
2: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
0: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में,
2: हर बुधवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। नया बेहतर है
5: क्योंकि तुम ही हो,
0: किंतु पुराना बेहतरीन।
6: दिल चीज क्या है?
2: नया श्रेष्ठ है
5: केसरिया तेरा,
0: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
2: नया उत्कृष्ट है
5: तेरी गलियां,
0: किंतु पुराना अनमोल।
6: चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
2: नया अनूठा है
0: किंतु पुराना अनुपम।
2: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
0: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में,
2: हर बुधवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
7: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
8: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग FM एंड 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होगी आपके मनपसंद फरमाइशी फोन कार्यक्रम हेलो हिसार की। तो आप रहिएगा तैयार अपने फोन कॉल्स के साथ और अपने मनपसंद गीत के साथ।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 MHz पर। श्रोताओं, सुप्रभात। कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक।

दोस्तों, जब रात अपनी चुप्पी समेट लेती है और उजाले की पहली किरण दरवाजा खटखटाती है, तब सिर्फ सूरज नहीं उगता, उगती हैं नई उम्मीदें, नए संकल्प और एक नया मौका। इन्हीं ताजी किरणों के साथ आप सभी को हमारा स्नेह भरा सुप्रभात।

दोस्तों, आज के मौसम की बात करें तो दिन शुरू हुआ है सुहानी सुबह के साथ, लेकिन आज आंधी और बारिश की संभावना है। कल भी रात में बारिश हुई थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

और अब आज का सुविचार। जिंदगी में हालात नहीं, हमारा नजरिया तय करता है कि सफर बोझ बनेगा या सीख। एक सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हौसला होता है, हिम्मत होती है, उसी से जिंदगी के रास्ते तय होते हैं।

और अब समय है उस अमूल्य ज्ञान का जो सिर्फ जिया नहीं जाता, जो सिर्फ बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और इस अमूल्य ज्ञान को महसूस करने वाले हैं हम। अब आपको हम सुनवा रहे हैं गीता के श्लोक, जिनसे ज्ञान मिलता है, समृद्धि होती है, शांति होती है और मन सुकून की ओर चला जाता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए।

क्रोधात् भवति सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशादुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं सुप्रभात कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और सुप्रभात में अब बारी है कुछ कहावतों की जो आप अपने दैनिक जीवन में रोज सुनते रहते हैं और अगर आप भूल भी जाएं तो हम अपने प्रोग्राम में उनको इसीलिए शामिल करते हैं ताकि इन कहावतों को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें और ये एक तरह से हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है जो आगे बढ़ रही है। आज की पहली कहावत, जैसा देश वैसा भेष, मतलब परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना समझदारी है। अगली कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बुरा अनुभव इंसान को जरूरत से ज्यादा सतर्क बना देता है।

दोस्तों, हमारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी बातें होती हैं जिनको सुनकर हम अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। जिंदगी में सुबह शाम आते जाते न जाने कितने लोगों से मिलते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, कुछ ऐसी बातें बता जाते हैं जो हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग आज साझा कर रहे हैं हम आपके साथ। एक बार एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत पूजा करता हूं पर मन अशांत रहता है। लोग बुरा कहते हैं तो गुस्सा आता है और तारीफ करते हैं तो अहंकार आ जाता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने नदी से एक कटोरी में पानी भरा और कहा, इस पानी को लेकर गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। युवक पूरा ध्यान लगाकर लौटा। संत ने पूछा, बताओ रास्ते में किसने क्या कहा? युवक बोला, महाराज, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, पूरा ध्यान तो पानी पर था। संत बोले, बस यही साधना है, जब ध्यान अपने कर्तव्य पर टिक जाए तो न प्रशंसा असर करती है और न निंदा। फिर संत ने धीरे से कहा, जो भीतर स्थिर हो गया वही सच में मुक्त है। युवक की आंखों में शांति उतर आई।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें। आज के समाचार
1: कुछ इस प्रकार हैं। और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
2: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
3: अभी न जाओ छोड़ कर।
1: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हर सुबह एक मौका है
1: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
1: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
1: आकाशवाणी हिसार के साथ।
4: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: तो श्रोताओं आज की सुबह हमें यही सिखा गई कि ध्यान भटके नहीं मन डगमगाए नहीं और कर्म सच्चा हो। इसी शुभ भावना के साथ आपसे लेते हैं विदा। दिन मंगलमय हो मन शांत रहे और जीवन में उजाला बना रहे। फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो साथी ऋतु कौशिक को अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे सुप्रभात एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके तुरंत बाद होंगे विविध भारती के प्रसारण।

0: के कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायत

राज्यमंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया

0: सर्बिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में

0: की गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: पांच में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।

0: समाजवाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी तीन रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुंगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों के धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा

0: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
1: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
2: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठे और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों

भूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं अलीशा मंडोसा और मोहित चौहान की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

द डर्टी पिक्चर इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कमाल खान का गाया हुआ, रजत अरोड़ा के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं माय फ्रेंड पिंटो फिल्म का ये गाना केके की आवाज में। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का है।

सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरिजो की आवाजों में आपने सुना गुलजार का लिखा यह गीत, विशाल भारद्वाज का संगीत, फिल्म का नाम एक थी डायन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अनिता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन नोयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

0: मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
1: ऐसी अद्भुत या

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।
1: दिल गया रौनके हयात गई, गम गया सारी कायनात गई।
0: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजा के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस

उनके गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नील कमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

0: नहीं क्या हमने तुझको पुकारे मेरा प्यार।
1: 1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

दोस्तों, जिंदगी के सफर में हम सब चल रहे हैं। हर किसी की राह अलग है, मंजिलें अलग हैं, और इस सफर में हम अपनी आंखों में ख्वाब सजाए, सपने संजोए, अपना अपना आसमान ढूंढते हैं, है ना। और ऐसे में एक दूसरे का साथ हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है, उत्साह जगाता है। इसीलिए आपसे मुखातिब होने आते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम लेकर। आज भी रोज की तरह लेकर हाजिर हैं हम नमस्ते हिसार कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक।

शुरुआत करते हैं हिसार और आसपास की ताजा हलचल से, क्योंकि रोज हम आपको कुछ खबरों तक पहुंचाते हैं जो हमारे शहर

स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ परेशान अभिभावक कई दिनों तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटते रहे और कई लिखित शिकायतें दर्ज कराई गई। इसी विफलता से सबक लेते हुए अब दूसरे चरण में सरकार ने 1 किलोमीटर के दायरे वाले नियम को सबसे अचूक हथियार बनाया है। अब शिक्षा विभाग ने ऐसे अभिभावकों सहित अन्य पात्र परिवारों को एक और मौका देते हुए RTI 2026 का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। उज्ज्वल पोर्टल पर 6 जुलाई रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

और अब दूसरी खबर, पेयजल सप्लाई व्यवस्था को लेकर। ग्रामीण अंचल में पेयजल सप्लाई व्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग के प्रचार से कई पंचायतें ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गई हैं। जिले के 3 ब्लॉकों की 33 ग्राम पंचायतों ने गांव में पेयजल आपूर्ति की कमान पूरी तरह अपने हाथों में लेने के लिए विभाग के साथ MOU साइन कर लिया है। पंचायतों के अब चाइल्ड अकाउंट खोले जाएंगे। 7 और 8 जुलाई को विशेष कैंप लगेंगे। बैंक अधिकारी मौके पर ही खाते खोलेंगे। पंचायतों को बैंकों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर ही कैंपिंग शेड्यूल तय कर दिया गया है। 7 जुलाई को बरवाला ब्लॉक और 8 जुलाई को उकलाना ब्लॉक में बैंक अधिकारियों की टीम विशेष कैंप लगाएगी। इन कैंपों से संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए BDPO और पंचायत सेक्रेटरी को भी इस मुहिम में विशेष रूप से शामिल किया गया है, ताकि खातों से जुड़े वेरिफिकेशन के काम में कोई देरी ना हो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। इससे पहले आप जान रहे थे हिसार और आसपास की खबरों के बारे में, और अब वक्त किस चीज का है आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वक्त है आपसे दो सवाल पूछने का, और इन सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी आपको भेजने हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और हमारा नंबर आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9729253272972925322। तो इस पर आपको सवालों के जवाब भेजने हैं, और सबसे पहले जो जवाब भेजेगा उस श्रोता के जो पसंदीदा गीत हैं वो चलाए जाएंगे, और सभी श्रोताओं के नाम हम प्रसारित करेंगे हमारे कार्यक्रम में जिन्होंने सही जवाब भेजे हैं। तो इससे पहले कि आप जवाब भेजें, हम बता देते हैं सबसे पहले आपको सवाल। पहला सवाल है फिल्म कटी पतंग, जो कि बहुत ही मशहूर फिल्म थी राजेश खन्ना की, उनके साथ किस अभिनेत्री ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। कटी पतंग में राजेश खन्ना के साथ किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ये था पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर SIR का काम चल रहा है, जो कि आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर SIR का काम चल रहा है, उसका पूरा नाम क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सवाल अच्छे से सुन लिए होंगे और आपने व्हाट्सएप नंबर टाइप कर लिया होगा, और जल्दी से इन सवालों के जवाब जो हैं आप भेजने वाले होंगे। तो जल्दी से लिख दीजिए अपने पसंद का गीत, हमें भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि जिसका जवाब सबसे पहले आएगा उनकी पसंद का गीत हम उन्हें सुनाएंगे।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और कार्यक्रम के अगले चरण में हम बात करेंगे हिसार से जुड़े एक प्रेरक व्यक्तित्व की, ऐसे व्यक्तित्व की जो अपने कामों से कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणा दे जाते हैं कि उससे पूरा समाज जो है वो जागृत हो जाता है और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है। हिसार के ऐसे ही एक प्रसिद्ध लोक व्यक्तित्व और साहित्यकार थे पंडित मदन गोपाल शास्त्री। उनका जन्म 10 मार्च 1930 को हिसार जिले के हांसी तहसील के पेटवाड़ गांव में एक सनातन परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा क्षेत्र के एक लोकप्रिय भजन प्रचारक थे। बालक मदन गोपाल ने क्रमशः 1950 और 1951 में शास्त्री और प्रभाकर की उपाधि उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी ओटी की सरकार द्वारा सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की परीक्षाओं से पीजी 1954 में ट्रेनिंग की और 1950 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद युवा शास्त्री ने उसी वर्ष एक स्कूल शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना शुरू किया था और 1988 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर वो बने रहे थे। हालांकि उनका पद स्थानांतरण ही था, फिर भी वो 1973 में स्थायी रूप से हिसार में बस गए थे। उनकी एक पुत्री और 4 पुत्र हैं, सभी उच्च शिक्षित और संपन्न हैं। उनके पुत्रों में से एक श्री सूर्यकांत शर्मा चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा में कार्यरत हैं। उनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जैसे वो पंजाब सरकार के शिक्षक संघ के महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने हरियाणा सरकार शिक्षक संघ के अध्यक्ष और हरियाणा अधीनस्थ सेवा महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सेवा करने के अलावा श्री शास्त्री कई वर्षों तक हिसार अर्बन स्टेट 2 वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। पंडित मदन गोपाल शास्त्री न केवल एक संघवादी थे बल्कि एक लेखक भी थे। बहुत से प्रकाशन उनके नाम हैं। अपने पूज्य पिता और भाई की इस

हरियाणा अधीनस्थ सेवा महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सेवा करने के अलावा श्री शास्त्री कई वर्षों तक हिसार अर्बन स्टेट 2 वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। पंडित मदन गोपाल शास्त्री न केवल एक संघवादी थे बल्कि एक लेखक भी थे। बहुत से प्रकाशन उनके नाम हैं। अपने पूज्य पिता और भाई के